0: अमरयतिमक लीनी एवे चोई सरे मोतनानि बिकोए बोलिंते ने नोवी
1: Ite nefsi entenas loforos martiro besois borgo ergio teodoros mesetarotileti lube